0: latest trends, the smartest brand.
1: Welcome back. Let's get you the latest from Maharashtra. Less than 48 hours since that huddle that took place at the residence of Uddhav Thackeray at Matoshri with UPT MPs there of the Shiv Sena faction. Operation Tiger Politics is yet again back in focus. We have rival Shinde faction making tall defection claims. And then despite the show of strength, there's the Shiv Sena MLC from their side suggesting that 7 of the 9 Shiv Sena UPT MPs could rebel against the party ahead of that winter session. And this comes after reports suggesting that Uddhav Thackeray, during that huddle, reportedly said, what is the point of forcibly holding back someone who really wants to leave? Adding that the rebels should be let go. Meanwhile, is Shiv Sena MLC reiterating that Operation Tiger is far from over and that the names would come out in open, and that is going to be coming out as early as 15 days time from now, with many MLAs also to follow suit.
2: देखिए उद्धव ठाकरे जी की जो पार्टी है उबाठा, उसमें अंदरूनी तौर पर भयंकर रूप से झगड़ा चल रहा है। उनके जो विधायक और सांसद हैं, उनका विश्वास नेतृत्व पर नहीं रहा। उनका आरोप है कि हमारा नेतृत्व बहुत अहंकारी हो गया है, हमारा नेतृत्व घर में बैठे वर्क फ्रॉम होम करता है, हमारा नेतृत्व, उनका यह आरोप है कि कैडर से कोई संवाद नहीं रखता है। उनके जो विधायक और सांसद है वो बोलते हैं कि हमसे हमारा लीडरशिप मिलता ही नहीं है, हमारी सुनवाई नहीं होती है, और इस वजह से पूरा का पूरा जो कैडर है वो इस समय नेतृत्व से नाराज है।
3: देखिए ऑपरेशन उल्फ कहना बहुत ही गलत है, बहुत ही गंदी बात वो हमेशा करते हैं, असंसदीय भाषा में बात करते हैं। ये तो यहाँ पे सब टाइगर्स है, इसलिए वापस जीत के आपके लोग क्यों नहीं जीत के आए? बाहा साहब के विचारों पे जो चलते हैं उनको टाइगर बोला जाता है, तो हम लोग बाहा साहब के विचारों पे चले, ना कि हम कांग्रेस के साथ कभी भी जुड़े। और कांग्रेस के साथ जुड़ना बाहा साहब को कभी भी मंजूर नहीं था। उन्होंने बोला था कि मैं अपना पक्ष बर्खास्त कर दूँगा जब ऐसी स्थिति आएगी कि मुझे कांग्रेस के साथ ज्वाइन होना पड़े। तो ये बाहा साहब के विचार थे, और वो विचारों के खिलाफ जो भी कृति हुई है वो लोगों ने अप्रूव नहीं किया है।
4: We are not getting into any speculation. There is no Operation Tiger. There is only Operation Progress. And we work in that direction to work for the people of Maharashtra. Our leader, Eknathji Shinde, is a most popular mass leader. And you see Paksh Pravesh every single day. We are not here to divide any party or destroy any party or poach from any party. We are here to do our job, which is Operation Progress.
1: And with that, we're slipping into a short break. Back with a whole lot more. Stay.

0: बहुत ही गलत है, बहुत ही गंदी बात वो हमेशा करते हैं, असंसदीय भाषा में बात करते हैं। ये तो यहाँ पे सब टाइगर्स है, इसलिए वापस जीत के आपके लोग क्यों नहीं जीत के आए? बाला साहब के विचारों पे जो चलते हैं उनको टाइगर बोला जाता है, तो हम लोग बाला साहब के विचारों पे चले, ना कि हम कांग्रेस के साथ कभी भी जुड़े। और कांग्रेस के साथ जुड़ना बाला साहब को कभी भी मंजूर नहीं था। उन्होंने बोला था कि मैं अपना पक्ष बर्खास्त कर दूंगा जब ऐसी स्थिति आएगी कि मुझे कांग्रेस के साथ ज्वाइन होना पड़े। तो ये बाला साहब के विचार थे, और वो विचारों के खिलाफ जो भी कृति हुई है वो लोगों ने अप्रूव नहीं किया है।
1: We are not getting into any speculation. There is no Operation Tiger. There is only Operation Progress. And we work in that direction to work for the people of Maharashtra. Our leader, Eknathji Shinde, is a most popular mass leader. And you see Paksh Pravesh every single day. We are not here to divide any party or destroy any party or poach from any party. We are here to do our job, which is Operation Progress.
2: On that note, we're slipping into a very quick break. The news and updates continue on NDTV 24/7, as always.

0: other than anything else, because you know, it's been about 100 years that the RSS has been you know, existent in India, and there are governments that have banned the RSS. They have taken note of the RSS, but they've never asked for registration, is what he claims. Now, he says that there is no reason for the RSS, which is a body of individuals, to go ahead and register. But as far as you know, Mr. Priyank Kharge, some of the Congress leaders, including Mr. B.K. Hariprasad, they believe otherwise, and they are demanding more answers. Now, how far this tug of war will continue, and how it will really fare, you know, politically as well in the state of Karnataka, these are things that are going to be closely watched out for.
1: Deepak, as always, thank you so much for joining us with the lowdown. We've also got Shehzad Poonawalla on behalf of the BJP joining us on the broadcast this morning. Mr. Poonawalla, thank you for your time. Congress leaders argue that the RSS exerts enormous influence on politics while maintaining that it is not a political organization. How do you respond to that criticism?
2: See, first of all, Priyank Kharge is like the Rahul Gandhi of Karnataka. He should tell us that Pranab Mukherjee visited the RSS headquarters. So if he has a problem, he should go ask Mr. Mukherjee's family what RSS stands for. For 60, 70 years, Congress has run a campaign of calumny and supari politics against the RSS. None of it has lasted in courts. Rahul Gandhi has said RSS killed Mahatma Gandhi. He had to apologize for it. And we have seen that how the ban on RSS participation of government servants was uplifted by the Madhya Pradesh High Court. So I think that this kind of frustration against nationalists should stop. This is the same Priyank Kharge who will open arms, you know, accept PFI and SDPI, but he has a problem with the RSS. This shows their double standards.
1: Mr. Poonawalla, thank you so much for joining us on behalf of the BJP. All right, let's turn our attention now to what's brewing as far as the Trinamool camp is concerned. After the merger of rebel TMC MPs with the NCPI, a legal tussle for the real TMC tag could be on the radar. You see, one of the senior most rebel MPs, Sudeep Bandyopadhyay, laid out the next steps, hinting that in July they will stake claim to the party name and symbol, and that courts will settle the matter. But the rebel camp appears to be a divided house, because during deliberations held at Bhupendra Yadav's house, sources say one section wanted a clean break from Mamata Banerjee's party with no claim over the name or symbol, but another camp is in favour of staking claim to the Trinamool Congress legacy. But when it comes to the rebel MLAs, they say they have no plans to merge with any other political party.
3: जहाँ तक पश्चिम बंगाल का लेजिस्लेटिव पार्टी का सवाल है, ऐसा कुछ बारे में हम लोगों को पता नहीं है. हम लोग भी टीवी के जरिए देखे हैं कि 20 एमपी और एनसीपीआई में मार्च हुए हैं. ये उन लोगों का फैसला है, हम लोग के अंदर ऐसा कोई चर्चा ही हुआ नहीं है.
4: टीएमसी बैनर में ही आप लोग आगे बढ़ेंगे?
3: ये तो बार बार हम लोग बोल चुके हैं, 80 में से 85 लोग, ये लोग एक साथ है, एकजुट है. ये कलेक्टिव क्या करेगा, ये बार बार हम लोग इसका दौरा किया है. मैं फिर और एक बार इसका दौरा नहीं करना चाहूँगा. हमारा स्टैंड लाउड एंड क्लियर है.
5: हम लोग हर समय ये कहते हैं, जो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर लोगों के लिए काम करना है, डेवलपमेंट करना है. वो डेवलपमेंट का बात किए हैं, बहुत अच्छी बात है. अगर हम लोग सब मिलकर डेवलपमेंट के साथ ही रहेंगे तो बंगाल के, कलकत्ता के उन्नति ज़रूर होगी. मेरे ख्याल से देखा जाए, वक्त बोलेगा, मगर हम लोग सब साथ हैं, डेवलपमेंट के साथ 100% है. वो लेके हम बात नहीं करेंगे.
6: ऑपोजिशन का वॉइस को रोकने के लिए करते, डराता है. घर से मत निकालो, घर से मत निकालो, घर से निकालेगा तो अंडा फेंकेगा, अंडा फेंकेगा. ये अंडा कल्चर ले आया है शुभेंदु अधिकारी खुद. ये शुभेंदु अधिकारी खुद ये अंडा कल्चर ले आया है बीजेपी का, और इसको इंडल्जर एंड पुलिस सब खड़ा होके देखते हैं. देखो पुलिस सब खड़ा होके, कोई फेसबुक देखता है, कोई खड़ा होके इधर का हाथ देके खड़ा होके रहता है. पुलिस पे क्यों कोई एक्शन नहीं, उसको मारो. पुलिस भी बोलता है मारो, पुलिस मंत्री तो शुभेंदु अधिकारी है, और पार्टी का तो चीफ मिनिस्टर है, तो वो भी मारो, दोनों मिलकर मारो.
7: देखिए, इसमें वो लोग टीएमसी पार्टी को छोड़े, वो दूसरा पार्टी को ज्वाइन करे, क्या करे, उसमें हम लोग का विशेष कोई इंटरेस्ट नहीं है. क्योंकि इतना प्रतिश्रुति दिए है और इतना सपना है बंगाल को आगे लेके जाने का, वो बहुत बड़ा काम है, वो कान में ही हम लोग जुटे हुए हैं.
1: All right. Meanwhile, let's turn our attention to the ED grilling as far as Abhishek Banerjee is concerned. The Enforcement Directorate's probe into the Bengal teachers' recruitment scam has taken center stage, with TMC MP Abhishek Banerjee facing nearly 11 hours of questioning. Sources say the ED grilled him on the alleged money trail, the cash transfers as well, chats and links to key accused in the case. And investigators also sought answers on the utilization of funds allegedly amassed through the scam and possible knowledge of irregularities too. While the BJP says Abhishek Banerjee must answer for the corruption allegations, the TMC time and again has asserted that this is a political witch hunt. Speaking after his appearance, Abhishek Banerjee alleged that opposition leaders are being threatened through central agencies, that central agencies have been weaponized, and he has vowed to continue the fight and not surrender.
8: BJP niye joto kom bola jay toto bhalo. একদিকে দল ভাঙানির খেলা, আর একদিকে বিরোধী শক্তি যারা লড়াই করছে মাথা নত না করে তাদেরকে কি করে দমানো যায়, তাদের ধমকানো যায়, চমকানো যায়, তাদের ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া যায়, কার্যত বিরোধী শূন্য করে দেওয়া যায় পশ্চিমবঙ্গকে, সেই চেষ্টাই গত এক মাস ধরে করা হয়েছে।
7: ঠিক আছে, তো পুলিশ কা বাত হ্যায়, সিআইডি কা বাত হ্যায়, ইডি কা বাত হ্যায়, ও লোগ ইনভেস্টিগেশন করেগা, লেকিন আজ জিস তরহ সে काउंसिलर लोगों में बोलिए, विधायक लोगों में बोलिए, सांसद लोगों में बोलिए, या आम टीएमसी कैडर में बोलिए, एक नीति कर दिया था चोरी चोरी करना, चोरी करना, सिंडिकेट चलाना, काटमानी लिया, ये तो नॉर्मल था, करप्शन करना ये तो नॉर्मल था। तो आज ये सब जवाब देना होगा, वेदर अभिषेक बैनर्जी, वेदर ममता बैनर्जी, वेदर यू नो अदर्स, जवाब देना पड़ेगा।
9: कोई नौकरी चोरी किया होगा, तो कोई कभी दारू भी चोरी कर लिया, तो कभी राशन चोरी किया, कभी रिलीफ आइटम्स भी चोरी कर लिया है, तो कभी कोयला घोटाला में उनका नाम आया है, तो उनको तो जवाब देना पड़ेगा। सरकार का पैसा है तो उनको तो जवाब देना पड़ेगा, जवाब देना चाहिए, इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अरे वो जवाब देना, इतना ऑडेसिटी है, वो कभी लोगों को जवाब देने के लिए उन्हें उनको प्रिपेयर होना है ये सोचा ही नहीं था। वो घूमता था सामने 500 पुलिस, पीछे 500 पुलिस लेके, और कोई कुछ पूछता तो उनको अरेस्ट करवा देता। तो अभी तो उनको जवाब देना पड़ेगा, और जिस तरह से पब्लिक का पैसा जो लोग हड़प लिया है, 100 करोड़ का हिसाब का गड़बड़ आ रहा है।
10: अभी 11 घंटा 12 घंटा चलेगा, इसका पहले भी किया है, अब भी हो रहा है, बहुत सारा कॉम्प्लेंस है, सब जगह उनका नाम आता है, तो इसलिए इसकी कार्रवाई शुरू हुई है, आप देखिए कहां तक जाता है।
1: All right, from West Bengal, let's turn our attention now to Maharashtra, where amid the Operation Tiger Buzz, basically speculating MPs from Shiv Sena UBT to quit the party and join the Eknath Shinde-led Sena, Sanjay Raut has asserted that all of its MPs are with the Uddhav Thackeray-led party and declared to launch Operation Wolf. Less than 48 hours since the Matoshri huddle of the UBT MPs, the Shiv Sena, with the Uddhav Thackeray faction, Operation Tiger Politics is yet again back in focus. Despite the show of strength, Shiv Sena MLC Krupal Tumane has suggested that 7 of the 9 Shiv Sena UBT MPs could rebel against the party ahead of the winter session later this year. This comes after reports suggest that Uddhav Thackeray, during this Matoshri huddle, reportedly said, and I quote, "What is the point of forcibly holding back someone who wants to leave?" adding that the rebels should be let go. Meanwhile, Shiv Sena MLC reiterated that Operation Tiger is far from over and that the names could come out in the open as early as in the next 15 days, with many MLAs to follow. Here are the reactions you can't ignore.
11: देखिए, उद्धव ठाकरे जी की जो पार्टी है उबाठा, उसमें अंदरूनी तौर पर भयंकर रूप से झगड़ा चल रहा है। उनके जो विधायक और सांसद है उनका विश्वास नेतृत्व पर नहीं रहा। उनका आरोप है कि हमारा नेतृत्व बहुत अहंकारी हो गया है, हमारा नेतृत्व घर में बैठे वर्क फ्रॉम होम करता है, हमारा नेतृत्व, उनका यह आरोप है कि कैडर से कोई संवाद नहीं रखता है। उनके जो विधायक और सांसद है वो बोलते हैं कि हमसे हमारा लीडरशिप मिलता ही नहीं है, हमारी सुनवाई नहीं होती है, और इस वजह से पूरा का पूरा जो कैडर है वो इस समय नेतृत्व से नाराज है।
12: देखिए, ऑपरेशन उल्फ कहना बहुत ही गलत है, बहुत ही गंदी बात वो हमेशा करते हैं, संसदीय भाषा में बात करते हैं, ये तो यहाँ पे सब टाइगर्स है इसलिए वापस जीत के आपके लोग क्यों नहीं जीत के आए? बाबा साहब के विचारों पे जो चलते हैं उनको टाइगर बोला जाता है, तो हम लोग बाबा साहब के विचारों पे चले, ना कि हम कांग्रेस के साथ कभी भी जुड़े। और कांग्रेस के साथ जुड़ना बाबा साहब को कभी भी मंजूर नहीं था। उन्होंने बोला था कि मैं अपना पक्ष बर्खास्त कर दूंगा जब ऐसी स्थिति आएगी कि मुझे कांग्रेस के साथ ज्वाइन होना पड़े। तो ये बाबा साहब के विचार थे और वो विचारों के खिलाफ जो भी कृति हुई है वो लोगों ने अप्रूव नहीं किया है।
1: We are not getting into any speculation. There is no Operation Tiger. There is only Operation Progress. And we work in that direction to work for the people of Maharashtra. Our leader, Eknathji Shinde, is the most popular mass leader. And you see Paksh Pravesh every single day. We are not here to divide any party or destroy any party or poach from any party. We are here to do our job, which is Operation Progress.
13: BJP or Narendra Modi, किस तरह से पार्टियां तोड़ते हैं ये तो आपने सबने देखा ही है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भूतपूर्व नड्डा ने ये कह दिया था कि हम सब स्टेट पार्टियां ख़त्म कर देंगे, तो उसका काम उनका शुरू हो गया है। तो जनभावना को नज़रअंदाज कर जिस तरह से बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकारें डर बताकर स्टेट पार्टियां कैसे तोड़ रहे हुआ अपने सामने देखा है, इसलिए मुझे लगता है कि इसके ऊपर मुझे बहुत चर्चा करना नहीं है। अब देश की जनता को पता हो गया कि लोकतंत्र को न मानने वाली जो केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है उसकी असलियत अब लोगों के सामने सही रूप में आना शुरू हो गई।
1: Right, let's switch tracks now. For years, the story of Jewar Airport has been about ambition. And now with commercial operations underway, it becomes a story about delivery. The airport is expected to reshape travel patterns across the NCR and parts of Western Uttar Pradesh. Basically, governments and industry groups argue it could attract investment, accelerate urban development and create a new economic corridor, triggering a real estate boom and opening up new opportunities for businesses and also residents alike. So as the first flights take off, a larger question is also taking off with them. Will Jewar become a genuine economic engine or will expectations run ahead of reality? My colleagues Bismi Taskin and Danish Anand have the details for you.
14: The launch of Noida International Airport is not just a milestone for aviation, the reshaping the landscape around Jewar. What was once a largely rural belt is now emerging as one of North India's fastest growing real estate destinations. Improved connectivity, infrastructure investments and rising commercial activity have driven demand for both residential and commercial properties in the region.
15: Commercial flights have started operating from the Noida International Airport. Now this launch has turned this otherwise quiet region into a massive real estate hotspot. For people in the nearby towns like Khurja, earlier traveling would mean mostly taking flights from Delhi after a long and tedious journey. Today, with the launch of this Noida International Airport and as commercial flights are commenced, this means that global travel is at their doorstep.
14: The airport's arrival has significantly improved accessibility across Western Uttar Pradesh and neighboring states. Developers, investors and home buyers are increasingly betting on the region's future growth prospects. Local residents say the airport has already transformed economic activity and property values.
16: कोई डाउट वाली बात नहीं है कि रियल एस्टेट यहाँ पे इससे बहुत ज़्यादा, रियल एस्टेट ही नहीं बल्कि और सारी चीज़ों में भी बिजनेस में बहुत ज़्यादा इससे ग्रोथ मिलेगा, बिकॉज इतने सारे लोग यहाँ पे आएंगे, काम करेंगे तो वो रहेंगे भी वहीं पे, इतने एयरपोर्ट पे भी लाखों लोग काम करेंगे, देयर आर सो मेनी पीपल्स वर्क देयर, तो दे विल लिव नियर अबाउट द एयरपोर्ट, तो डेफिनेटली ऑक्यूपेंसी बढ़ेगी, रियल इस्टेट भी ब्रूम करेगा। तो अभी प्राइस कम से कम यहाँ पे 20-25% हाइक तो हो ही गया है।
14: The airport's impact extends far beyond real estate. Authorities have focused on creating seamless connectivity from day one to to ensure passengers can easily access the new gateway.
17: From day one, the Noida Airport authorities and the government authorities have ensured that there is proper connectivity in place, not only in terms of app-based cab services, but we have also seen that UPSRCTC, which is the state transport corporation, it has announced that there will be several buses that will connect with certain parts of Western UP to the airport. Besides UPRSTC, we're also seeing that the Haryana Roadways and Uttarakhand Roadways, they've also talked about connecting the Noida International Airport to certain cities on their end. But if we look at from a road connection point of view, the Yamuna Authority has also informed that they are constructing a special loop on the expressway so that it can cater to the traffic that is dedicatedly coming to the Noida International Airport.
14: The infrastructure push is also creating confidence among businesses that have been operating in the region for years. Many believe the airport has accelerated development that was already underway along the Yamuna Expressway corridor.
18: यहाँ पे मैं पिछले सात सालों से काम कर रहा हूँ, जो कि यमुना एक्सप्रेसवे पर काम कर रहा हूँ और ग्रेटर नोएडा में काम कर रहे हैं। और देखो, अगर हम प्रैक्टिकल यहाँ पे देखें, तो काफी अच्छा मार्केट ऊपर ग्रो करा है पिछले दो सालों के अंदर। जो चीज एक रुपए की थी, वो आज के टाइम में तीन रुपया की है। तो यही चीज आपको बताती है कि हम रियल एस्टेट में कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं।
14: एंड दिस इज ओनली द बिगिनिंग। Airport authorities are already preparing for a significant expansion in flight operations. From around a dozen daily flights currently, the airport plans to scale up to more than 40 daily flights from next month. The management believes the airport is well positioned to serve passengers across Delhi NCR and Western Uttar Pradesh while easing pressure on Delhi's existing aviation infrastructure.
19: I'm convinced we're able to offer them a seamless experience, a hassle-free experience, at the same time a warm and a welcoming experience that's very much, you know, in and of its place here in Western Uttar Pradesh. And I think that's the proposition that we bring. There's, if you're now traveling to and from Delhi, NCR, Western UP, you now have an option, you have an alternative. And I think we're excited about having, that opportunity to bring this airport to the capital region.
14: For Jewar, the first commercial flight marks much more than the start of airport operations. It signals the beginning of a new growth story, one driven by connectivity, investment and opportunity. An airport that was once a vision on paper is now becoming the economic engine of an entire region. With Bismi Taskin and Danish Anand, Bureau Report, NDTV.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस।

0: Now they requested that they want to extend support to NDA, and so the sitting arrangement should be done accordingly. So Speaker is likely to decide in that matter also.
1: Right, Akhilesh, thank you so much for getting us details. And like Akhilesh was mentioning, this is after the merger of the rebel TMC MPs, 20 of them, with the NCPI, and the legal tussle as far as the real tag of the TMC is concerned, that could be next. One of the senior most rebel MPs, Sudeep, has laid out the next steps, hinting that it's going to be in July when they will stake claim to the party's name and the party's symbol, and that courts will be the ones settling the matter. But the rebel camp appears to be divided. Now, during deliberations held at Bhupinder Yadav's house, at this took place over the weekend, Sosa is saying one section wanted a clean break from Mamata Banerjee's party, with no claim whatsoever when it comes to the name or the symbol of the TMC. Then there's another camp that is in favour of staking claim as far as the legacy is concerned of the TMC. But when it comes to the rebel MLAs, they say they have no plans to merge with any other political party.
2: जहाँ तक पश्चिम बंगाल का लेजिस्लेटिव पार्टी का सवाल है, ऐसा कुछ बारे में हम लोगों को पता नहीं है. हम लोग भी टीवी के जरिए देखे हैं कि 20 एमपी और एनसीपीआई में मार्च हुए हैं. ये उन लोगों का फैसला है, हम लोग के अंदर ऐसा कोई चर्चा ही हुआ नहीं है.
3: टीएमसी बैनर में ही आप लोग आगे बढ़ेंगे,
2: ये तो बार बार हम लोग बोल चुके हैं. 80 में से 85 लोग, ये लोग एक साथ है, एकजुट है. ये कलेक्टिव क्या करेगा, ये बार बार हम लोग इसका दौरा किया है. मैं फिर और एक बार इसका दौरा नहीं करना चाहूंगा. हमारा स्टैंड लाउड एंड क्लियर है.
4: हम लोग हर समय ये कहते हैं, जो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर लोगों के लिए काम करना है, डेवलपमेंट करना है. वो डेवलपमेंट का बात किए हैं, बहुत अच्छी बात है. अगर हम लोग सब मिलकर डेवलपमेंट के साथ ही रहेंगे तो बंगाल के कलकत्ता की उन्नति जरूर होगी. मेरे ख्याल से देखा जाए, वक्त बोलेगा, मगर हम लोग सब साथ हैं, डेवलपमेंट के साथ 100% है.
5: 20 MPs कल एनसीपीआई पार्टी
4: वो लेके हम बात नहीं करेंगे.
6: ऑपोजिशन का वॉइस को रोकने के लिए करते, डराता है. घर से मत निकालो, घर से मत निकालो, घर से निकालेगा तो अंडा फेंकेगा, अंडा फेंकेगा. ये अंडा कल्चर ले आया है शुभेंदु अधिकारी खुद. ये शुभेंदु अधिकारी खुद ये अंडा कल्चर ले आया है बीजेपी का, और इसको इंडल्जर है. पुलिस सब खड़ा होके देखते हैं. देखो पुलिस सब खड़ा होके, कोई फेसबुक देखता है, कोई खड़ा होके इधर का हाथ देके खड़ा होके रहता है. पुलिस पे क्यों कोई एक्शन नहीं, उसको मारो. पुलिस भी बोलता है मारो. पुलिस मंत्री तो शुभेंदु अधिकारी है, और पार्टी का तो चीफ मिनिस्टर है, तो वो भी मारो, दोनों मिलके मारो.
7: देखिए इसमें वो लोग टीएमसी पार्टी को छोड़े, वो दूसरा पार्टी को ज्वाइन करे, क्या करे, उसमें हम लोग का विशेष कोई इंटरेस्ट नहीं है. क्योंकि इतना प्रतिश्रुति दिए है और इतना सपना है बंगाल को आगे लेके जाने का, वो बहुत बड़ा काम है. वो कान में ही हम लोग जुटे हुए हैं.
1: Right, let's just get you more breaking news coming in at the moment, and this is coming out of Karnataka. We have the Home Minister there, Priyank Kharge, there slamming the RSS again, and Kharge there demanding legal accountability from the RSS. Priyank Kharge said that the RSS must now follow the law, and RSS is not above scrutiny. But Priyank Kharge has also gone ahead and said no institution is above the law, and RSS should function transparently. This is the RSS chief, to remember, Mohan Bhagwat, who has brushed aside the Karnataka Home Minister's call for greater transparency from the organisation, saying that the demand is driven by politics rather than genuine concern over accountability. So that's what we have at the moment. Of course, this is a reaction as far as Mohan Bhagwat is concerned. But the controversy that began with that letter, an open letter to the RSS chief by Priyank Kharge, seeking details about the organization's registration status, sources of funding, income, expenditure, its assets as well, arguing that an organization with a nationwide presence and thousands of daily trakas should be subject to public scrutiny. And that is what the Congress leader said, that the RSS should adhere to the same disclosure norms applicable to NGOs, to companies and religious institutions. And that is where it all started from. And again, that call is being demanded, in fact, is being urged by Priyank Kharge, seeking information regarding the funding and asking for RSS to be more transparent in the matter, in the regard. So, and saying that no one really is above scrutiny, no one's above the law, and that they need to, in fact, follow the law is what Priyank Kharge has gone ahead and said. Asking the organization to clarify its legal status, its registration, sources of फंडिंग।

0: Congress and the larger issue that the party is now facing with a rebel group there within the party. After the merger of rebel Trinamool Congress MPs with the NCPI, legal tussle now for the real Trinamool Congress tag could be the next fight for the Trinamool Congress. Now, according to sources, Lok Sabha Secretariat is processing a petition from the 20 rebel TMC MPs who are seeking that merger with the NCPI. The process is likely to be completed within the next 5 to 7 days. Sources also say the Lok Sabha Speaker Om Birla will then take a decision in the matter of the TMC rebel MPs only after hearing both sides. The Speaker's office has also emailed the core group of TMC MPs led by Mamata Banerjee. These MPs have been called for a meeting with the Lok Sabha Speaker. One of the senior most rebel MPs, Sudeep Bandopadhyay, who was considered a close aide of Mamata Banerjee's for years now, he laid out the next steps, hinting that in July they will stake claim to the party name and symbol and that the courts will settle the matter. Remember, the same thing had happened with the Shiv Sena in Maharashtra. But when it comes to the rebel MLAs, however, who are led by Ritabrata Banerjee, they have said that they have no plans to merge with any other political party.
1: जहां तक पश्चिम बंगाल का लेजिस्लेटिव पार्टी का सवाल है, ऐसा कुछ बारे में हम लोगों को पता नहीं है. हम लोग भी टीवी के जरिए देखे हैं कि 20 एमपी और एनसीपीआई में मार्च हुए हैं. ये उन लोगों का फैसला है, हम लोग के अंदर ऐसा कोई चर्चा ही हुआ नहीं है.
2: टीएमसी बैनर में ही आप लोग आगे बढ़ेंगे?
1: ये तो बार बार हम लोग बोल चुके हैं, 80 में से 85 लोग, ये लोग एक साथ है, एकजुट है. ये कलेक्टिव क्या करेगा, ये बार बार हम लोग इसका दौरा किया है. मैं फिर और एक बार इसका दौरा नहीं करना चाहूंगा. हमारा स्टैंड लाउड एंड क्लियर है.
3: তারপরে স্পিকারের ঘরে আলোচনা হয়েছিল, আমাদেরকে ঘর দেওয়া হবে এবং একটা ব্লক দেওয়া হবে. তার বাইরে কোনো আলোচনা কোনো পর্যায়ে কোথাও হয়নি. মন্ত্রী হওয়া, পার্টির নেতা হওয়া, এসব বিষয় নিয়ে যারা স্পেকুলেশন করছেন, আমার অনুরোধ এগুলো বন্ধ রাখুন. এসব ধরনের কোনো আলোচনা কোনো পর্যায়ে কোথাও হয়নি, আমি অস্বীকার করছি এবং এখনও বলছি যে কোনো একটি উদ্দেশ্যমূলক মহল থেকে এই কথা প্রচার করে আমাদের মধ্যে এই যে ঐক্যের একটা পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে তাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছে.
4: হাম লোগ হর সময় ইয়ে কহতে হ্যাঁ যে পার্টি পলিটিক্স সে উপর লোককে লিয়ে কাম করনা হ্যাঁ ডেভেলপমেন্ট করনা হ্যাঁ ও ডেভেলপমেন্ট কা বাত কিয়ে হ্যাঁ বহুত অচ্ছি বাত হ্যাঁ আগর হাম লোগ সব মিলকে ডেভেলপমেন্ট কে সাথী রহেঙ্গে তো বঙ্গাল কে কলকাতা কে উন্নতি জরুর হোগি মেরে খেয়াল সে দেখা যায় বক্ত বোলেগা মগর হামলোগ সব সাথ হ্যাঁ ডেভেলপমেন্ট কে সাথ 100%
5: হ্যাঁ 20 এমপিস কাল এনসিপিআই পার্টি
4: ও লেকে হাম বাত নেই করেঙ্গে
6: অপোজিশন কা ভয়েস কো রোকনে কে লিয়ে কারতে ডরাতা হ্যায় ঘর সে মত নিকালো ঘর সে মত নিকালো ঘর সে নিকালেগা তো আন্ডা ফাকেগা আন্ডা ফেকেগা এ আন্ডা কালচার লে আয়া হ্যায় শুভেন্দু অধিকারী খুদ এ শুভেন্দু অধিকারী খুদ এ আন্ডা কালচার লে আয়া হ্যায় বিজেপি কা আর ইসকো ইন্ডালজ রে আর পুলিশ সব খাড়া হোকে দেখতে হ্যায় দেখো পুলিশ সব খাড়া হোকে কই ফেসবুক দেখতে হয় কই খাড়া হোকে ইধার কা হাত দেখে খাড়া হোকে রহতা হয় পুলিশ পে কেউ কই অ্যাকশন নেই উসকো মারো পুলিশ ভি বলতা হয় মারো পুলিশ মন্ত্রী তো শুভেন্দু অধিকারী হয় আর পার্টি কা তো চিফ মিনিস্টার হয় তো ও ভি মারো দোনো মিলকে মারো
7: দেখি কিসমে ও লোগ টিএমসি পার্টি কো ছোড়ে ও দূসরা পার্টি কো জয়েন করে ক্যা করে উসমে হাম লোগ কা विशेष कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इतना प्रतिश्रुति दिए है और इतना सपना है बंगाल को आगे लेके जाने का, वो बहुत बड़ा काम है, वो कान में ही हम लोग जुटे हुए हैं.
0: All right, and after rebel MPs in the Trinamool Congress, now rebel MPs in the Shiv Sena Uddhav Thackeray. Operation Tiger Buzz is rocking the Uddhav Sena. Political drama continuing to intensify in Maharashtra as the Shinde Sena leader has made a big claim on the Uddhav camp MPs. Shinde Neta has said that 7 Udhav Sena MPs will join the Shinde faction before the monsoon session and therefore become then a part of the NDA. The statement comes amid increased political activity and back-channel discussions in the state, adding to the political heat. Reports also suggest that Uddhav Thackeray, during a recent Matoshri meeting that he had called, reacted to this exit buzz, saying that there is no point in forcibly holding back those who want to leave, indicating a softer stand towards potential rebels. With both sides making strong claims, all eyes are now on whether the monsoon session will see a major political shake-up in Maharashtra as well.
8: ऐसा है कि ऑपरेशन टाइगर के मामले में जो सात सांसदों के साथ में हमारी चर्चा अंतिम क्षण में आ चुकी है, जैसा हम लोग ऑपरेशन करने किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो पहले इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, और वो इन्वेस्टिगेशन सारे रिपोर्ट्स आ चुकी है। अभी केवल ये डॉक्टर का अंतिम ऑपरेशन का जो दिन होता है, ऑपरेशन की अपॉइंटमेंट दिन आना है, ऑपरेशन के दिन आ जाएगा, उस दिन ही ऑपरेशन हो जाएगा, मानसून सत्र के पहले में ये हो जाएगा।
9: शिवसेना एक ऐसी पार्टी है, बाला साहब ठाकरे ने बनाई हुई पार्टी है, मजबूत पार्टी है। ये MLA और MPs की पार्टी नहीं है। हम लोग MLA बनाते हैं, बार बार लोग छोड़ जाते हैं, चले जाते हैं, उनकी इच्छा। बेईमान लोगों को, बेईमान जो होता है, आप उनको कितने दिन पकड़ कर रखेंगे? देख लेंगे ना क्या होता है वो।
10: देखिए, उद्धव ठाकरे जी की जो पार्टी है उबाठा, उसमें अंदरूनी तौर पर भयंकर रूप से झगड़ा चल रहा है। उनके जो विधायक और सांसद है उनका विश्वास नेतृत्व पर नहीं रहा। उनका आरोप है कि हमारा नेतृत्व बहुत अहंकारी हो गया है, हमारा नेतृत्व घर में बैठे वर्क फ्रॉम होम करता है। हमारा नेतृत्व, उनका यह आरोप है कि कैडर से कोई संवाद नहीं रखता है। उनके जो विधायक और सांसद है वो बोलते हैं कि हमसे हमारा लीडरशिप मिलता ही नहीं है, हमारी सुनवाई नहीं होती है, और इस वजह से पूरा का पूरा जो कैडर है वो इस समय नेतृत्व से नाराज है।
11: देखिए, ऑपरेशन उल्फ कहना बहुत ही गलत है, बहुत ही गंदी बात वो हमेशा करते हैं, संसदीय भाषा में बात करते हैं। ये तो यहाँ पे सब टाइगर्स है, इसलिए वापस जीत के आपके लोग क्यों नहीं जीत के आए? बाला साहब के विचारों पे जो चलते हैं उनको टाइगर बोला जाता है, तो हम लोग बाला साहब के विचारों पे चले, ना कि हम कांग्रेस के साथ कभी भी जुड़े। और कांग्रेस के साथ जुड़ना बाला साहब को कभी भी मंजूर नहीं था। उन्होंने बोला था कि मैं अपना पक्ष बर्खास्त कर दूंगा जब ऐसी स्थिति आएगी कि मुझे कांग्रेस के साथ ज्वाइन होना पड़े। तो ये बाला साहब के विचार थे, और वो विचारों के खिलाफ जो भी कृति हुई है वो लोगों ने अप्रूव नहीं किया है।
12: We are not getting into any speculation. There is no Operation Tiger. There is only Operation Progress. And we work in that direction to work for the people of Maharashtra. Our leader, Eknathji Shinde, is a most popular mass leader. And you see Paksh Pravesh every single day. We are not here to divide any party or destroy any party or poach from any party. We are here to do our job, which is Operation Progress.
0: All right, so there you heard the various comments that have been made. Let's go across to Abhishek Awasthi now for more on this entire story. And Abhishek, so what is the latest really that you're hearing about the Uddhav Shiv Sena or the Thackeray apparently taking this stand, saying that those who want to leave will leave, today may not be my day, but tomorrow they will realize their mistake. Take us through all these developments that are taking place in Maharashtra.
13: See, people have to understand that this has not happened in just one day itself. You know, Operation Tiger, something which was brewing from past few months, and time and again we have reported certain secret meetings as well as developments regarding that. And more importantly, the recent meeting of the MPs that that was conducted on Sunday, this was not the first one. It was most importantly the second one after this all speculation of Operation Tiger. And also in the first meeting, you know, more than 3 to 4 MPs were not present physically. And in a meeting which has already been called on a scheduled time beforehand, and you don't expect 5 of the MPs to be present on that day, something is not right in the party, something that we understand. But though Sanjay Raut and other MPs which were present, they tried to, you know, present a rosy picture in front of the media, where they said that some joined online, some had a call with the with Uddhav Thackeray himself, and then after we have a source-based info clearly making a point out there where Uddhav Thackeray, you know, openly expressed his concern that today is not my day and in future it will be ours, and you know, I won't hold you back, but it would be your decision, and a true Shiv Sainik wouldn't have done something which you would be doing in future. You know, these are certain statements which are still source-based because Sanjay Raut has openly denied that, making a point that he was present in the meeting and Uddhav Thackeray has not said anything like that. But our sources have confirmed to us that Uddhav had maintained the same stand which he had in 2022, and now again he is not in the not want to you know, keep them waiting. Who wants to go can go. Back to you.
0: All right, Abhishek, so thanks so much for joining us with that. We'll return to you for more. So definitely the NDA getting those numbers ahead of the monsoon session. Now Uddhav, now breaking news coming in, and the Uddhav Thackeray led Shiv Sena has called a meeting of its MLAs on the 22nd of June. Remember earlier calling a meeting of its MPs, and many of those MPs, five of them, not turning up. That has created a huge buzz, and as Abhishek was telling us, this is something that has been ongoing in Maharashtra for some time. Operation Tiger is what it's being referred to as. This attempt to break away more leaders from the Shiv Sena, especially the MPs who may now switch over to the Shinde Sena. Let's go back to Abhishek for more on this story now. And Abhishek, after testing the MPs, it seems that Uddhav Thackeray now has called for a meeting of its MLAs. And is this also in a sense to see who all turn up?
13: Definitely, this is what the point is out here, and this proves that, you know, all is not well in the party. After MPs, now MLAs. And remember, there are 20 MLAs of Uddhav Thackeray as far as the lower house is concerned, and several MLC also. So definitely, on that day also, it will be very crucial how many turns up, and that day starts the monsoon session of Maharashtra Assembly. So it will be very crucial to understand how many MLAs turn out for the meeting, and is all is well as far as MLAs is concerned or not, is something we will have to wait and watch out for till 22nd of June. Back to you.
0: All right, Abhishek, thanks so much for joining us with all those developments. So there you can see Operation Tiger underway in Maharashtra. Well, with that, we'll slip into a short break. Coming up on the other side, we'll get you all the latest developments when it comes to the Iran-US peace deal.

ऑपरेशन टाइगर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बहुत चर्चा है सर इसके बारे में, दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक।

0: ऐसा है कि ऑपरेशन टाइगर के मामले में जो 7 सांसदों के साथ में हमारी चर्चा अंतिम क्षण में आ चुकी है, जैसा हम लोग ऑपरेशन करने किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो पहले इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, और वो इन्वेस्टिगेशन सारे रिपोर्ट्स आ चुकी है। अभी केवल ये डॉक्टर का अंतिम ऑपरेशन का जो दिन होता है, ऑपरेशन की अपॉइंटमेंट दिन आना है, ऑपरेशन के दिन आ जाएगा, उस दिन ये ऑपरेशन हो जाएगा, मानसून सत्र के पहले में ये हो जाएगा।
1: शिवसेना एक ऐसी पार्टी है, बाला साहब ठाकरे ने बनाई हुई पार्टी है, मजबूत पार्टी है। ये एमएलए और एमपीस की पार्टी नहीं है। हम लोग एमएलए बनाते हैं, बार बार लोग छोड़ जाते हैं, चले जाते हैं, उनकी इच्छा। बेईमान जो होता है, आप उनको कितने दिन पकड़ कर रखेंगे? देख लेंगे ना क्या होता है वो।
2: देखिए, उद्धव ठाकरे जी की जो पार्टी है उबाठा, उसमें अंदरूनी तौर पर भयंकर रूप से झगड़ा चल रहा है। उनके जो विधायक और सांसद है उनका विश्वास नेतृत्व पर नहीं रहा। उनका आरोप है कि हमारा नेतृत्व बहुत अहंकारी हो गया है, हमारा नेतृत्व घर में बैठे वर्क फ्रॉम होम करता है। हमारा नेतृत्व, उनका यह आरोप है कि कैडर से कोई संवाद नहीं रखता है। उनके जो विधायक और सांसद है वो बोलते हैं कि हमसे हमारा लीडरशिप मिलता ही नहीं है, हमारी सुनवाई नहीं होती है, और इस वजह से पूरा का पूरा जो कैडर है वो इस समय नेतृत्व से नाराज है।
3: देखिए, ऑपरेशन उल्फ कहना बहुत ही गलत है, बहुत ही गंदी बात वो हमेशा करते हैं, संसदीय भाषा में बात करते हैं। ये तो यहाँ पे सब टाइगर्स है, इसलिए वापस जीत के आपके लोग क्यों नहीं जीत के आए? बाला साहब के विचारों पे जो चलते हैं उनको टाइगर बोला जाता है, तो हम लोग बाला साहब के विचारों पे चले, ना कि हम कांग्रेस के साथ कभी भी जुड़े। और कांग्रेस के साथ जुड़ना बाला साहब को कभी भी मंजूर नहीं था। उन्होंने बोला था कि मैं अपना पक्ष बर्खास्त कर दूंगा जब ऐसी स्थिति आएगी कि मुझे कांग्रेस के साथ ज्वाइन होना पड़े। तो ये बाला साहब के विचार थे, और वो विचारों के खिलाफ जो भी कृति हुई है वो लोगों ने अप्रूव नहीं किया है।
4: We are not getting into any speculation. There is no Operation Tiger. There is only Operation Progress. And we work in that direction to work for the people of Maharashtra. Our leader, Eknathji Shinde, is a most popular mass leader. And you see Paksh Pravesh every single day. We are not here to divide any party or destroy any party or poach from any party. We are
5: Welcome back. Prime Minister Modi has reached Evian in France for the G7 summit. In fact, he posted looking forward to engaging with world leaders and exchanging views on key global issues. India remains committed to advancing collective effort for a more sustainable and prosperous planet. The G7 taking place in France, and the Prime Minister will also be holding a bilateral with US President Donald Trump. NDTV's Vishnu Shom sent us this report.
6: The Prime Minister's presence in G7 comes at a time when there have been monumental changes in the last 48 hours. With the war in West Asia likely coming to an end, this G7 is particularly important. And we'll also be looking very closely at what happens here in Geneva, where I am, where on Friday there is an expectation that representatives of Israel, Iran and the United States will be present to put a formal end to this war. In Geneva, Vishnu Shom for NDTV.

0: no point in forcibly holding back those who want to leave, indicating a softer stand towards potential rebels. With both sides making strong claims, all eyes are now on whether the monsoon session will see a major political shake-up in Maharashtra as well.
1: ऐसा है कि ऑपरेशन टाइगर के मामले में जो सात सांसदों के साथ में हमारी चर्चा अंतिम क्षण में आ चुकी है, जैसा हम लोग ऑपरेशन करने किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो पहले इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, और वो इन्वेस्टिगेशन सारे रिपोर्ट्स आ चुकी है। अभी केवल ये डॉक्टर का अंतिम ऑपरेशन का जो दिन होता है, ऑपरेशन की अपॉइंटमेंट दिन आना है, ऑपरेशन के दिन आ जाएगा, उस दिन ही ऑपरेशन हो जाएगा, मानसून सत्र के पहले में ये हो जाएगा।
2: शिवसेना एक ऐसी पार्टी है, बाला साहब ठाकरे ने बनाई हुई पार्टी है, मजबूत पार्टी है। ये एमएलए और एमपीस की पार्टी नहीं है। हम लोग एमएलए बनाते हैं, बार बार लोग छोड़ जाते हैं, चले जाते हैं, उनकी इच्छा। बेईमान जो होता है, आप उनको कितने दिन पकड़ कर रखेंगे, देख लेंगे ना क्या होता है वो।
3: देखिए, उद्धव ठाकरे जी की जो पार्टी है उबाठा, उसमें अंदरूनी तौर पर भयंकर रूप से झगड़ा चल रहा है। उनके जो विधायक और सांसद हैं, उनका विश्वास नेतृत्व पर नहीं रहा। उनका आरोप है कि हमारा नेतृत्व बहुत अहंकारी हो गया है, हमारा नेतृत्व घर में बैठे वर्क फ्रॉम होम करता है। हमारा नेतृत्व, उनका यह आरोप है कि कैडर से कोई संवाद नहीं रखता है। उनके जो विधायक और सांसद है वो बोलते हैं कि हमसे हमारा लीडरशिप मिलता ही नहीं है, हमारी सुनवाई नहीं होती है, और इस वजह से पूरा का पूरा जो कैडर है वो इस समय नेतृत्व से नाराज है।
4: देखिए, ऑपरेशन उल्फ कहना बहुत ही गलत है, बहुत ही गंदी बात वो हमेशा करते हैं, संसदीय भाषा में बात करते हैं। ये तो यहाँ पे सब टाइगर्स है, इसलिए वापस जीत के आपके लोग क्यों नहीं जीत के आए? बाला साहब के विचारों पे जो चलते हैं उनको टाइगर बोला जाता है, तो हम लोग बाला साहब के विचारों पे चले, ना कि हम कांग्रेस के साथ कभी भी जुड़े। और कांग्रेस के साथ जुड़ना बाला साहब को कभी भी मंजूर नहीं था। उन्होंने बोला था कि मैं अपना पक्ष बर्खास्त कर दूंगा जब ऐसी स्थिति आएगी कि मुझे कांग्रेस के साथ ज्वाइन होना पड़े। तो ये बाला साहब के विचार थे, और वो विचारों के खिलाफ जो भी कृति हुई है वो लोगों ने अप्रूव नहीं किया है।
5: We are not getting into any speculation. There is no Operation Tiger. There is only Operation Progress. And we work in that direction to work for the people of Maharashtra. Our leader, Eknathji Shinde, is a most popular mass leader. And you see Paksh Pravesh every single day. We are not here to divide any party or destroy any party or poach from any party. We are here to do our job, which is Operation Progress.
0: All right, so there you heard the various comments that have been made. Let's go across to Abhishek Awasthi now for more on this entire story. And Abhishek, so what is the latest really that you're hearing about the Uddhav Shiv Sena or the Thackeray apparently taking this stand, saying that those who want to leave will leave, today may not be my day, but tomorrow they will realize their mistake. Take us through all these developments that are taking place in Maharashtra.
6: See, we will have to understand that this has not happened in just one day itself. You know, Operation Tiger, something which was brewing from past few months, and time and again we have reported certain secret meetings as well as developments regarding that, and more importantly, the recent meeting of the MPs that was conducted on Sunday. This was not the first one. It was most importantly the second one after this all speculation of Operation Tiger. And also in the first meeting, you know, more than 3 to 4 MPs were not present physically. And in a meeting which has already been called on a scheduled time beforehand, and you don't expect 5 of the MPs to be present on that day, something is not right in the party, is something that we understand. But though Sanjay Raut and other MPs which were present, they tried to, you know, present a rosy picture in front of the media, where they said that some joined online, some had a call with the with Uddhav Thackeray himself, and then after we have a source-based info clearly making a point out there, where Uddhav Thackeray, you know, openly expressed his concern that today is not my day and in future it will be ours, and you know, I won't hold you back, but it would be your decision. And a true Shiv Sainik wouldn't have done something which you would be doing in future. You know, these are certain statements which are still

0: India Inc.'s most respected names, chose India Inc.'s best and brightest.
1: I'm delighted to be chairing a committee of such distinguished fellow businessmen, bankers. It's just lovely to be back on this NDTV jury. I have been a fan of NDTV for a long time.
2: Many of the nominees are extremely close together in terms of what they've done.
3: Gender parity to be reflected in while we choose leadership as well.
4: It's also important that how they are reshaping the industries.
5: We've got a fantastic jury and we've left all decisions to the wisdom of the jury.
0: Who will earn India's top business honors? Find out at the NDTV Profit Business Leadership Awards. Coming soon.
6: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
7: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
8: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
9: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal.
8: The show that sets the prime time agenda.
9: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
8: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV.
10: Welcome, you're watching NDTV. I'm Aditi Bhardwaj, and let's take a look at the top stories that we are tracking here at this hour. Prime Minister Narendra Modi, welcomed by French President Emmanuel Macron. He attended the G7 powerful summit that took place. This powerful photograph has become one of the most important pictures in the history, where it represents and reflects India's growing dominance. Prime Minister Narendra Modi and Donald Trump handshake becomes the visual of the moment. Bilateral meetings include a Trump-Modi discussion. They are expected tomorrow. Operation Tiger in Maharashtra is underway. Shinde Sena leader's big claim says 7 Uddhav Thackeray MPs will join Shinde Sena before monsoon session. Says talks are in final stage. Temporary ban on Telegram in a move to curb paper leak ahead of NEET examination. Centre has also instructed platforms to disable its message editing feature in India until June 30th. NTA says measures aimed at preventing organised cheating networks. Israeli envoy speaks to NDTV, raises concern over US-Iran deal, says ceasefire and reopening of the Strait of Hormuz are not enough to resolve deeper security risks for Israel. Starting off with some breaking inputs coming in from Maharashtra, where as per sources, some of Uddhav's MPs, their phones are switched off. Uddhav Thackeray is personally trying to persuade the disgruntled netas. But so far, Uddhav's MPs are in incommunicado and they are unable to reach them. Some MPs are also heading towards Delhi, which remains a big concern for Uddhav Thackeray. My colleague Ram Shinde is with me for more details. Ram Shinde, please do tell us about what more are you picking up from your sources?
11: Uh, बिल्कुल, जो बंगाल में टीएमसी के साथ हुआ वहीं अब महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ हो रहा है। उद्धव ठाकरे के 6 जो सांसद है वो अभी नॉट रीचेबल है, वो दिल्ली आ रहे हैं ऐसे पता चला है, और कल वो अपनी मीटिंग लेंगे और मीटिंग के बाद जो संसद का ग्रुप लीडर है वो तय करेंगे और व्हिप भी तय करेंगे, और उसके बाद ये लेटर जो है वो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मीटिंग करेंगे और उनको ये जो लेटर है वो देंगे, ऐसा भी जानकारी पता चल रही है। लेकिन अभी जो ताज़ी खबर है जो कि संजय राउत ने अभी ट्वीट किया है, और ट्वीट करके ये बताया गया है कि सांसदों को खरीदने का काम शुरू हुआ है और आज रात को सांसदों को खरीदा जाएगा, और इसलिए 15 करोड़ का एडवांस जो है वो देने के लिए सांसदों को यहाँ पे दिल्ली में बुलाया गया है। उन्होंने आंकड़ा भी डाला है कि कितने करोड़ दिए जा रहे हैं, 15 करोड़ में सांसद खरीदी का काम जो है वो चल रहा है और ये घिनौना है, ऐसा उन्होंने अभी ट्वीट भी किया है। दोनों ग्रुप जो है वह अभी दिल्ली में है, एक तरफ से उद्धव ठाकरे के जो 6 सांसद टूटने वाले हैं वो भी अभी दिल्ली में आए हैं, और कुछ सांसद जो है वो अभी भी आ रहे हैं, और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के जो भरोसे के सांसद है अनिल देसाई, अरविंद सावंत, ये दोनों और संजय राउत, ये तीनों दिल्ली में सुबह से ही आए हैं, क्योंकि अनिल देसाई ये चीफ व्हिप है और अरविंद सावंत ये ग्रुप लीडर है, तो कोई भी अगर एक्शन लेनी है तो इन दोनों को ही एक्शन लेनी होगी। कोई भी कॉग्निजेंस अगर रजिस्टर करना है या फिर लोकसभा अध्यक्ष के पास जाकर कोई भी कंप्लेंट करनी है तो इन दोनों को ही करनी है, और इन दोनों ने ही आज दिन भर जो सांसद नाराज थे उनको मनाने की कोशिश की, लेकिन पूरी सभी कोशिशें जो है वो नाकाम हुई ऐसे दिख रहा है, और आज रात की फ्लाइट से ये सभी सांसद 6 सांसद यहाँ पे आ रहे हैं। अब उद्धव ठाकरे की पार्टी दूसरी बार टूट की कगार पे खड़ी है, देखना होगा कल का दिन, ये महत्वपूर्ण होगा उद्धव ठाकरे के लिए। और खबर ये भी है कि एकनाथ शिंदे आज रात को आने वाले हैं और जो बागी सांसद है उनके साथ मीटिंग करने वाले हैं, और फिर ग्रुप लीडर जो है वो तय किया जाएगा, व्हिप तय किया जाएगा, और जो प्रोसीजर है वो कल पूरी की जाएगी। तो इसका मतलब है कि 20 तारीख से पहले ये पूरी प्रोसीजर जो है वो खत्म होगी, तो इसलिए कल का दिन दिल्ली में महत्वपूर्ण है उद्धव ठाकरे के लिए और एकनाथ शिंदे के लिए भी।
10: एब्सोल्युटली, वेरी इंपॉर्टेंट एंड इनसाइटफुल डिटेल कमिंग इन माय कॉलीग, थैंक यू सो मच राम शिंदे फॉर गिविंग अस। राम शिंदे वाज इन्फॉर्मिंग अस दैट टुनाइट इज अ वेरी की नाइट, 15 crore इज द प्राइस दैट इज बीइंग ऑफर्ड फ्रॉम शिंदे सेना टू यूबीटी एमएलएज, एंड दीज एमपीज आर फ्लाइंग tonight to Delhi where a meeting will be held with the Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde, in whose party these disgruntled netas from Uddhav's faction will be coming in. So important details there being highlighted of how Operation Tiger is being played out in Maharashtra. To tell you more about this in detail, the Maharashtra politics is buzz with this Operation Tiger. What is this Operation Tiger? This is the Uddhav Sena symbol after which this whole ruckus has been created about how people are unhappy in UBT and they want to switch sides. Now Maharashtra, Shinde Sena leader has made a big claim saying that at least 7 Uddhav Sena MPs are willing to join Shinde faction before the monsoon session. The statement comes amid increased political activity and back-channel discussions in the state. Meanwhile, Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde evaded any question on Operation Tiger, maintaining silence on the political controversy surrounding the issue. Uddhav Thackeray has summoned party MLAs on June 22nd amid Operation Tiger buzz. Shiv Sena UBT is likely to discuss party strategy and future political course with them. With both sides making strong claims, all eyes are now on whether the monsoon session sees a major political shake-up in Maharashtra. How many MLAs, MPs will stay with Uddhav and how many will jump ship to Shinde Sena? Sample the reactions.
12: टाइगर चल रहा है, शिंदे सर 5 से 6 सांसद ऐसे हैं उनके जा सकते हैं, ऑपरेशन टाइगर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बहुत चर्चा है सर इसके बारे में दिल्ली से लेके महाराष्ट्र तक।
13: उसका मतलब है कि वो लोग टाइगर समझते हैं ना कि हम टाइगर हैं, और टाइगर का ऑपरेशन आसान नहीं होता है। कोशिश तो करेंगे, उनके पास दूसरा कोई काम नहीं है, देश कल्याण का काम नहीं है, जनता के कल्याण का काम नहीं है, पार्टियां तोड़ो, लोगों से यही काम चल रहा होता है।
14: संकट नहीं है,
13: संकट नहीं है। अगर संकट आता है तो संकट को निपटाने।
15: ऑपरेशन टाइगर की जो खबर आ रही है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है?
16: ऐसा कोई ऑपरेशन वगैरह नहीं है, ये बात

0: of a large-scale demolition operation by the NDA, or are things simply falling apart for an opposition that is plagued with inherent contradictions and infighting? Why do we say that? Well, take a look at what has happened over the last 24 hours. First, a massive buzz that MPs and MLAs of Uddhav Thackeray's party are now set to jump ship. And within hours of that, what happens? A scathing criticism of the Congress and Rahul Gandhi coming not from the BJP, but in fact, the DMK, a former ally of the Congress in Tamil Nadu and somebody who technically is still a part of the INDI. So what did the DMK say that has set the political circles abuzz? A week after a massive coordination meeting that the India bloc had held in Delhi, the DMK launched a no-holds-barred, double-barreled attack at the grand old party and Rahul Gandhi in particular. First, the party's IT wing mocked Rahul Gandhi as a massive joke, their words. Then its official mouthpiece, Murasoli, accused him of weakening opposition unity. It went so far as to say that the Congress backstabbed the DMK with the direct blessings of Rahul Gandhi himself. Further, Murasoli asked whether it wasn't shameful for the Congress to continuously work against its India partners in the state elections, constantly attack them, whether it be West Bengal, whether it be Kerala, and then go right back to ask for their support during the Lok Sabha polls.
1: MK ko itna bhi yaad hona chahiye ki Atal Bihari ji ke samay yahi BJP ke saath khade the. Theek hai, ye koi aisa nahi hai ki keval secular forces ke saath rahe hain. है ना, और डीएमके कभी किसी के था, और कांग्रेस का देखिए तमिलनाडु में कोई एक छत्र एक ही तरीके की अलायंस नहीं रही है. कांग्रेस की भी कभी अन्ना डीएमके से थी, कभी डीएमके से थी. डीएमके ने कभी कांग्रेस को बहुत विरोधी समझा, फिर कांग्रेस के साथ अलायंस भी किया. एक समय था जब डीएमके कांग्रेस को और बिल्कुल छूटी भी नहीं थी. हम लोगों ने तब अन्ना डीएमके के साथ अलायंस किया था. कांग्रेस का जो उदय डीएमके का उदय हुआ है कांग्रेस के खिलाफ, बल्कि जितना तीखापन और जितनी एक तरीके से आप समझिए जमीन स्तर से कभी कभी नीची बातें डीएमके ने की है कांग्रेस के बारे में, ठीक है, एक जमाने में अपना अपना अपना वैचारिक वर्चस्व कायम करने के लिए उसने कांग्रेस के खिलाफ बहुत सी बातें कही.
2: द सिचुएशन दैट इवॉल्व्ड इन तमिलनाडु इज समथिंग विच हैज टू बी लुक्ड फ्रॉम द एंगल दैट हैड कांग्रेस नॉट टेकन अ डिसीजन of allying, getting in alliance with the Vijay's party. It, had that not happened, it would have been a direct situation of having president's rule, which means it is equivalent to central gaining control over Tamil Nadu. So it was very pertinent that Congress takes a decision in the larger interest of ensuring BJP do not handle the clutches of power in Tamil Nadu.
3: Immediately after post elections were over, all his five MLAs, even without meeting our leader, where in which alliance they were contesting, they had shifted their allegiance to TVK and they got two ministers and one member, Rajya Sabha member. Now whatever he speaks, the people of Tamil Nadu will not accept.
0: If that wasn't enough to set the cat among the pigeons in opposition ranks, now comes the buzz that Shiv Sena UBT is going down the same path as the TMC, with seven MPs at least set to split. Leaders like MLC of the Shiv Sena, Krupal Tumane, and Pratap Rao Jadhav have hinted at some movement in the near future, with Uddhav's netas being unhappy, discontented, and apparently straining at the leash to work in national interest with a double-engine Sarkar.
4: उमाटा गढ़ के जो सांसद हैं, वहाँ के जो विधायक हैं, उनमें के दिल में बहुत बड़ा असंतोष और नाराजगी है, क्योंकि उन पर बार बार शक जताया जाता है, बार बार उनको बुलाया जाता है और उनसे मान सम्मान उनका कहीं नहीं किया जाता है. इसलिए वो लोग सभी नाराज है और उनका दिल में जो नाराजगी है, तो निश्चित रूप से कभी न कभी तो बाहर आएंगी.
5: ऑपरेशन टाइगर के मामले में जो सात सांसदों के साथ में हमारी चर्चा अंतिम क्षण में आ चुकी है, जैसा हम लोग ऑपरेशन करने किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो पहले इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, और वो इन्वेस्टिगेशन सारे रिपोर्ट्स आ चुकी है. अभी केवल ये डॉक्टर का अंतिम ऑपरेशन का जो दिन होता है, ऑपरेशन की अपॉइंटमेंट दिन आना है, ऑपरेशन के दिन आ जाएगा, उस दिन ही ऑपरेशन हो जाएगा.
6: मिल सी वगैरह क्या होता है उधर शिंदेगढ़ के, कौन है ये आदमी, मुझे मैं उसको खुद पहचानता नहीं हूँ, ये बात करेगा क्या? देखिए शिवसेना एक ऐसी पार्टी है, बाला साहब ठाकरे ने बनाई हुई पार्टी है, मजबूत पार्टी है, ये एमएलए और एमपीस की पार्टी नहीं है। हम लोग एमएलए बनाते हैं बार बार, लोग छोड़ जाते हैं, चले जाते हैं उनकी इच्छा। बेईमान लोगों, बेईमान जो होता है आप उनको कितने दिन पकड़ कर रखेंगे, देख लेंगे ना क्या होता है वो।
0: And that makes us ask, with the defection, discontent and infighting in its ranks now becoming more and more apparent, is INDIA in a self-induced free fall, or is this really a part of the BJP's mega operation as is being alleged? Joining us on the show today, we have Suzy Ben Shah from the Shiv Sena, A. Sarvanan of the DMK will be joining us in just a bit. Anand Dubey of the Shiv Sena UBT is here with us, always happy and smiling, irrespective of kaun aa raha hai, kaun ja raha hai, unko koi farak nahi padta. Syed Asad Abbas, political analyst, joins us along with senior journalist Harshvardhan Tripathi. Syed Asad Abbas, let me start with you. I mean, you know, Congress from Bengal, from Kashmir to Kanyakumari, from Tamil Nadu to, you know, Thiruvananthapuram is accusing the BJP of poaching, and yet you have your own ally saying, and I quote, they are saying things like, you're a backstabber, immature, and you're weakening India bloc. Congress is using underhand tactics to stop India bloc partners from winning assembly elections only to seek their support in Lok Sabha. This is a sign of political immaturity. Rahul Gandhi lacks integrity. Now tomorrow they are going to leave you and go elsewhere and you will accuse BJP. Why are you doing this to DMK and allies like them?
7: Padmaja ji, I've always believed with great power, there's great responsibility and equal accountability. The DMK leader, the mouthpiece and so on and so forth are entitled to their respective opinion. But the fact of the matter, had Rahul Gandhi ji not taken this decisive decision in Tamil Nadu, it would have called for a raid by the president or again a re-election or BJP to play its dirty tricks department. Let me tell you, BJP always calls Congress as a tukde-tukde gang. The real tukde-tukde gang, Padmaja ji, is the Bharatiya Janata Party, which breaks all the rest of the parties. Trinamool Congress ko le lo, Shiv Sena ko le lo, NCP ko le lo, aur pata nahi kitne aur parties ke tukde-tukde karenge apni siyasat ke liye.
0: And DMK?
7: Kursi hai na,
0: but tomorrow, if DMK was to leave you, who will be responsible?
7: ऐसी कुर्सी उसको चाहिए।
0: अरे कुर्सी तो आपको भी चाहिए ना, ऐसी कुर्सी के लिए, एक राज्यसभा और दो मंत्रियों के लिए आपने डीएमके को टिका दिया, एंड नाउ यू आर बीइंग होलियर देन थाउ। कुर्सी तो आपको भी चाहिए सैयद असद अब्बास।
7: नहीं पद्मजा जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम सब जानते हैं कि विजय हैज बीन अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ द कांग्रेस पार्टी, ही हैज बीन अ वेरी स्ट्रांग अलाय ऑफ द कांग्रेस पार्टी। द टाइमिंग ऑफ कोर्स डिफर्ड, बट व्हेन ही केम टू प्ले फॉर द पीपल ऑफ तमिलनाडु, Shri Rahul Gandhi ji had to take this decision. Oh. But let me make a larger idea. Why the defection
0: maybe
7: of
0: just
7: parties?
0: Like Rahul Gandhi had to take this very difficult decision in national interest.
7: 30 seconds.
0: Maybe the TMC also had to take this in national interest.
7: I'll tell you why. I'll tell you why the defectors of TMC, Shiv Sena and NCP had to go the other way. Bharatiya Janata Party, when it wants to break a party, it looks at all those netas which can be bought by dam. यानी तो साम या फिर दंड, यानी तो भेद, साम दाम दंड भेद, सीबीआई, ईडी, आईटी, दीज आर द डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। दे विल यूज देम, दे विल हिट देम एंड देन दे विल पोच देम। हॉर्स ट्रेडिंग भी हो जाएगा, फिश पोंगरिंग भी हो जाएगा, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। बट लेट मी टेल यू, इब्तिदाए सियासत है रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। अगर मेरा मुल्क, मेरा हिंदुस्तान एक ही पार्टी बीजेपी पार्टी हो जाए, आई वुडंट बी सरप्राइज्ड टुडे। दे हैव ऑल द पावर्स इन द माइट ऑफ देयर हैंड्स, दे हैव ऑल द इंस्टीट्यूशंस इन देयर हैंड्स, दे हैव ऑल द इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज इन देयर हैंड। एनी नेता हु ट्राइज टू एक्ट स्मार्ट, ऑल दे हैव टू डू इज, ये देखो सीबीआई का केस, ये देखो ईडी का केस, आ जाओ हिमंत बिस्व शर्मा, आ जाओ ऐसे भ्रष्ट नेता।
0: व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट एवरीवन बट द डीएमके? सैयद असद अब्बास, व्हाट इज रिस्पांसिबल इफ ईडी के डर से सब लोग छोड़ते हैं? आपने किसके डर से डीएमके को छोड़ा? व्हाई डिड यू डंप द डीएमके?
7: I will tell you, Padmaja ji, with respect to the matters of Tamil Nadu, let us understand that Vijay and his party undoubtedly had the people's majority vote. Unfortunately, they were running short of a couple of seats. Where the request was made, the parties came together and Rahul Gandhi did adhere to it. But let us also understand, had it not been the case, it would have been destabilized the voter. Rahul Gandhi ji merely kept his ears on the ground of
0: very, very noble, very, very noble. And it's interesting. It's interesting. Let me bring in Harshvardhan Tripathi on this, because India Today still says, INDIA says, that it is only the BJP which is destabilizing. Hum sab to aapas mein acche se kaam kar rahe hain, barring Tamil Nadu. And let me also quickly tell our viewers, why was the DMK so incensed? This has come in response actually to a speech of Rahul Gandhi's at a meeting of that India Alliance that he made public. In that he said, I kept telling TMC they are living in a dreamland, they are not going to win. Now, the opposition parties are saying, look, you keep talking down to us. You keep looking down upon us. People like Tejaswi Yadav, people like Akhilesh Yadav, they spoke up in that meeting and said, why did you let the DMK and Aam Aadmi Party exit this alliance? It's a very serious breach. Tejaswi Yadav went so far as to warn the Congress about certain leaders of the grand old party having an understanding with the BJP in Bihar. The Congress party, their leadership did nothing to address those issues. Now, the DMK is asking, who is churning poison instead of nectar? Rahul Gandhi is saying, look, it's my job to take everyone along. I'm going to unite all of you with a smile and with happiness. And anything that you, throw at me by way of criticism, I'm going to swallow all of that poison. Like a Neelkant, like Lord Shiv himself, I'm going to swallow all of that poison. Clearly, the opposition, and definitely not the DMK, is having any of that. Now, my question is, Harshvardhan ji, ye kiski responsibility hai? Agar koi is waqt dukhi hai, koi naraaz hai, koi India ko chhod karke ja raha hai, India Gathbandhan ko, to kiski responsibility hai? BJP ki hai ya andar jo inki antarkalah chal rahi hai?
8: Parija ji, main thoda sa dusre perspective se aata hun, kyunki abhi hamare mitr itna cheek chilla gaye aur laga aise ki jaise desh khatam ho gaya hai, party ek hi reh jayegi. उन्हें पता नहीं ये मतलब ध्यान में नहीं है या यूं ही बोल गए कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री और तमिलनाडु में विजय मुख्यमंत्री हैं अभी अभी हरा कर आए हैं उन्होंने स्टालिन को हराया है केरलम में वीडी सतीशन मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना में रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक में भी सरकार बदली है वहां सिद्धारमैया से डी के शिवकुमार आए हैं ये भारतीय जनता पार्टी के स्टेट्स नहीं है पंजाब में भगवंत मान है ठीक है अभी अभी उनके ऊपर वो बेअदबी का मामला चल रहा है तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ जिससे थोड़ा ध्यान में आए कि डेमोक्रेसी है भैया इंडिया में आप भूल गए वो कांग्रेस का टाइम था जब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक ही पार्टी हुआ करती थी पहली बार दूसरा मेनका गांधी को मोदी शाह ने हटाया था क्या ये सोनिया गांधी से निजी खुन्नस थी चलिए वो नहीं समझ में आ रहा है तो अभी का थोड़ा ध्यान दिलाते हैं रोहिणी आचार्य तेजस्वी यादव से किस वजह से नाराज होकर गई थी ईडी सीबीआई इनकम टैक्स अमित शाह ने फोन किया था कौन सी वजह थी जगन मोहन रेड्डी कांग्रेस को छोड़कर क्यों गए थे ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ दी थी जरा ये बताइए ये मैं इसलिए ध्यान में दिला रहा हूं क्योंकि इस वक्त लोगों को ऐसा लग रहा है कि सारी बदमाशी अमित शाह कर देते हैं सबको तोड़ देते हैं सिर्फ और सिर्फ दो वजहों से कोई पार्टी या उसमें लोग टिक सकते हैं पहला आइडियोलॉजिकल बेस कमिटमेंट दूसरा पावर सारी पार्टी पावर के लिए काम करती कोई देश सेवा के लिए काम कर रही हो ऐसा होता तो देश बहुत आगे चला गया फर्स्ट प्रायोरिटी पावर होती आइडियोलॉजिकली बैंक करप्ट लोग कह रहे हैं कि हमारी पार्टी टूट रही वरना भारतीय जनता पार्टी जो लोग कहते हैं आपके भी तो दो सांसद थे बिल्कुल थे लेकिन वो आइडियोलॉजिकली बड़े स्ट्रांग थे कमिटेड थे और फिर मैं कह रहा हूं ये नहीं चलेगा कि रेवंत रेड्डी तेलंगाना में केसीआर की पार्टी के लोगों को तोड़कर अपने में ले ले तो डेमोक्रेसी अशोक गहलोत बीएसपी को तोड़कर अपने में ले ले तो डेमोक्रेसी दूसरे लोग शरद पवार कुछ कर ले तो वो तो मास्टर स्ट्रोक है और अमित शाह की पार्टी में नरेंद्र मोदी की पार्टी में कोई आए तो वो तो डेमोक्रेसी खत्म हो गई मोरालिटी खत्म हो गई भैया एक लेवल प्लेइंग फील्ड करो एक पैमाना रखो और मैं फिर कह रहा हूं आपको लगता है तो इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात कीजिए अगर 2/3 मेजोरिटी से आज की तारीख में पार्टी टूट सकती है और सांसद विधायक टूट रहे तो उसको कोई रोक नहीं सकता है
0: आनंद दुबे जी टूट तो हर जगह पड़ी हुई है भले से ही वो डीएमके कांग्रेस के मेल में हो या फिर अब ऐसा लग रहा है कि आपकी खुद की पार्टी के अंदर हो क्या हो रहा है वहां पे 22 तारीख को मैंने सुना है कि इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है
9: हाँ इमरजेंसी मीटिंग तो होती है अभी ऑपरेशन का जमाना है डॉक्टर लोग ऑपरेशन कर रहे हैं तो इमरजेंसी में कभी कभी पेशेंट को डॉक्टर बुला लेते हैं खैर कुछ लोग लाना चाहते हैं हमारे जीवन में तूफान जो करना चाहते हैं हमारी पार्टी का नुकसान वो कर रहे हैं हमारे सांसद को नया नया फरमान लेकिन नहीं पूरे हो पा रहे हैं उनके अरमान कोई बात नहीं हमारे सांसद 9 हैं 9 में से सुन रहा हूं 4-5-6-7 उड़ने वाले हैं कहीं कोई बात नहीं हम क्या करें जब बनाई हुई पार्टी के ही इतने बड़े बड़े नेता जा रहे हैं, और ऐसा भी नहीं कि हमने उन्हें कुछ दिया नहीं, किसी को सांसद बनाया, किसी को एमपी एमएलए बनाया, किसी को क्या क्या बनाया, अगर वो जा रहे हैं पद्मजा जी तो क्या करें, कितना रोकें? इससे अच्छा मुस्कुराते रहो, गीत गाते रहो और लोगों को हंसाते रहो। इसके अलावा आप कोई विकल्प विपक्ष के पास बचा नहीं है। अभी हर्षवर्धन जी कह रहे थे, सही बात है, हम विपक्ष में है,
0: क्यों जा रहे हैं लोग? आनंद जी,
9: अरे लोग जा रहे हैं, लोग इसलिए जा रहे हैं कि लोग, हम नदियां हैं और नदियां जाती हैं महासागर की दिशा में। महासागर बुलाता है, महासागर कहता आओ मुझमें मिल जाओ, मुझमें समर्पण कर दो, और जब महासागर बुलाता है तो लोग जाते हैं, जो नहीं जा पाते हैं उन पर बांध बना दिए जाते हैं।
0: ओ देखिए, दिस वाज टोटली अनइंटेंशनल, बट बात करते करते आपकी बत्ती क्यों गुल हो गई? आनंद दुबे जी, इज दिस अ साइन ऑफ थिंग्स टू कम? सूजी बहन, महासागर में विलय करने के लिए, बट लुक, आई मीन ऑन अ सीरियस नोट, पीपल आर आस्किंग कि दिस इज बीइंग डन इन अ वेरी कैलकुलेटेड फैशन। It can't be a coincidence that suddenly, before the monsoon session, TMC MPs suddenly want to work with double engine Sarkar. Shiv Sena MPs want to work with a double engine Sarkar. And all of them somehow are congregating at Bhupendra Yadav's house.
10: No, I will tell you this very, very clearly. Good evening, everyone. And it's always a pleasure to be on the show of NDTV. But I'll tell you this. Here, the moot question is, it is not that who's calling them. Why the people are leaving their party? You see, what has happened is today that they've just become a Facebook party, Facebook live party. You see, the non-attendance of the UBT MPs is so telling, because people have lost faith in the presidency. They just are on the live TV show. They don't come out of their homes. There is no strengthening of the party. Today, you see, and the stark difference here is Eknath Rao Shinde. He's our he's the tall leader who travels the nook and corner of Maharashtra. You see, Dr. Shrikant Shinde, he has been going jilla to jilla, village to village, to meet people, to strengthen the party, hear the karyakartas, talk to the MLAs, get the ministers talking to their karyakarta, build the party. And where is the missing prince? He's not on the ground. It is just on Facebook Live. And therefore, their MPs also are only on.
0: So you're saying all of these MPs are very impressed with the groundwork that your leaders are doing. And suddenly in the interest of, you know, hard work that you are putting in, they want to switch sides.
10: No, they are... For them, it is for ghar vapsi. We are the Shiv Sena. We are the Dhanush Baan. We have the ideological Pashvabhumi, which is called ideological history of Hindu Hriday Samrat Bala Sahib Thackeray, right? And we are delivering. And I'll tell you this. Why should we not welcome people who want to join the process of nation building?
0: Love.
10: Whether it be the UCC, whether it be the delimitation, whether it be the Women's Reservation Bill, whether it be Section 370, whether it be one nation, one election.
0: Very.
10: Why not?
0: Very, very noble and lofty objective. So let me ask Mr. Sarvanan, since he's also, his party is so, you know, so angry of late with the opposition alliance. Are you also, like the TMC and Shiv Sena UBT, going to join the mission of nation building anytime soon, Mr. Sarvanan?
11: No. When has the BJP built the nation? BJP has only built the cronies' bank.
10: You see, all these jublas and snide comments is not called for. We are here in the party, whether it be in Maharashtra or Delhi, on a political, democratic manner. Please accept that. It is the call of the nation. It is the people who voted for us.
0: Okay, let him answer. Let him answer. But then you are angry, Mr. Sarvanan. Where will you go?
10: Don't pass this jublas.
0: You are angry with the Congress also. You are angry with the BJP also. What will you do? Will you build the nation alone?
11: We will find a way. We will find a way. We know the way. We will move forward. See, the problem is this. When we wanted to ensure that the BJP is rooted out of power, we allied with the Congress. But the Congress, see, as pointed out in our magazine, Murasali, it's very, very clear that the Congress party wants to sabotage the regional parties. This happened in Bihar. This happened with Mr. Tejaswi Yadav. Until the last moment, they did not formalize the alliance. The same thing they tried to do in the state of Tamil Nadu. And the another problem
10: total
11: is they were out on a sinister design.

0: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
1: Really?
0: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl. Art that made it to the gram. And trends that kept us with the program. Let's get it. Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.
2: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capital.
3: Hello and welcome. You're watching NDTV. I'm Aditi Bhardwaj and let's take a look at the top stories that we are tracking here at this hour. Prime Minister Narendra Modi, welcomed by French President Emmanuel Macron. He attended the G7 powerful summit that took place. This powerful photograph has become one of the most important pictures in the history, where it represents and reflects India's growing dominance. Prime Minister Narendra Modi and Donald Trump handshake becomes the visual of the moment. Bilateral meetings include a Trump-Modi discussion. They are expected tomorrow. Operation Tiger in Maharashtra is underway. Shinde Sena leader's big claim says seven Uddhav Thackeray MPs will join Shinde Sena before monsoon session. Says talks are in final stage. Temporary ban on Telegram in a move to curb paper leak ahead of NEET examination. Center has also instructed platforms to disable its message editing feature in India until June 30th. NTA says measures aimed at preventing organized cheating networks. Israeli envoy speaks to NDTV, raises concern over US-Iran deal, says ceasefire and reopening of the Strait of Hormuz are not enough to resolve deeper security risks for Israel. Starting off with some breaking inputs coming in from Maharashtra, where as per sources, some of Uddhav's MPs, their phones are switched off. Uddhav Thackeray is personally trying to persuade the disgruntled netas. But so far, Uddhav's MPs are in incommunicado and they are unable to reach them. Some MPs are also heading towards Delhi, which remains a big concern for Uddhav Thackeray. My colleague Ram Shinde is with me for more details. Ram Shinde, please do tell us about what more are you picking up from your sources?
4: बिल्कुल, जो बंगाल में टीएमसी के साथ हुआ वहीं अब महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ हो रहा है. उद्धव ठाकरे के 6 जो सांसद है वो अभी नॉट रीचेबल है, वो दिल्ली आ रहे हैं ऐसे पता चला है और कल वो अपनी मीटिंग लेंगे और मीटिंग के बाद जो संसद का ग्रुप लीडर है वो तय करेंगे और व्हिप भी तय करेंगे और उसके बाद ये लेटर जो है वो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मीटिंग करेंगे और उनको ये जो लेटर है वो देंगे, ऐसा भी जानकारी पता चल रही है. लेकिन अभी जो ताज़ी खबर है जो कि संजय राउत ने अभी ट्वीट किया है और ट्वीट करके ये बताया गया है कि सांसदों को खरीदने का काम शुरू हुआ है और आज रात को सांसदों को खरीदा जाएगा और इसलिए 15 करोड़ का एडवांस जो है वो देने के लिए सांसदों को यहाँ पे दिल्ली में बुलाया गया है. उन्होंने आंकड़ा भी डाला है कि कितने करोड़ दिए जा रहे हैं. 15 करोड़ में सांसद खरीदी का काम जो है वो चल रहा है और ये घिनौना है, ऐसा उन्होंने अभी ट्वीट भी किया है. दोनों ग्रुप जो है वह अभी दिल्ली में है. एक तरफ से उद्धव ठाकरे के जो 6 सांसद टूटने वाले हैं वो भी अभी दिल्ली में आए हैं और कुछ सांसद जो है वो अभी भी आ रहे हैं और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के जो भरोसे के सांसद है अनिल देसाई, अरविंद सावंत, ये दोनों और संजय राउत, ये तीनों दिल्ली में सुबह से ही आए हैं क्योंकि अनिल देसाई ये चीफ व्हिप है और अरविंद सावंत ये ग्रुप लीडर है, तो कोई भी अगर एक्शन लेनी है तो इन दोनों को ही एक्शन लेनी होगी। कोई भी कॉग्निजेंस अगर रजिस्टर करना है या फिर लोकसभा अध्यक्ष के पास जाकर कोई भी कंप्लेंट करनी है तो इन दोनों को ही करनी है। और इन दोनों ने ही आज दिन भर जो सांसद नाराज थे उनको मनाने की कोशिश की, लेकिन पूरी सभी कोशिशें जो है वो नाकाम हुई ऐसे दिख रहा है। और आज रात की फ्लाइट से ये सभी सांसद 6 सांसद यहाँ पे आ रहे हैं। अब उद्धव ठाकरे की पार्टी दूसरी बार टूट की कगार पे खड़ी है। देखना होगा कल का दिन, ये महत्वपूर्ण होगा उद्धव ठाकरे के लिए। और खबर ये भी है कि एकनाथ शिंदे आज रात को आने वाले हैं और जो बागी सांसद है उनके साथ मीटिंग करने वाले हैं और फिर ग्रुप लीडर जो है वो तय किया जाएगा, व्हिप तय किया जाएगा और जो प्रोसीजर है वो कल पूरी की जाएगी। तो इसका मतलब है कि 20 तारीख से पहले ये पूरी प्रोसीजर जो है वो खत्म होगी। तो इसलिए कल का दिन दिल्ली में महत्वपूर्ण है उद्धव ठाकरे के लिए और एकनाथ शिंदे के लिए भी।
3: एब्सोल्युटली वेरी इंपॉर्टेंट एंड इनसाइटफुल डिटेल कमिंग इन माय कॉलीग, थैंक यू सो मच राम शिंदे फॉर गिविंग अस। राम शिंदे वाज इन्फॉर्मिंग अस दैट टुनाइट इज अ वेरी की नाइट, 15 crore इज द प्राइस दैट इज बीइंग ऑफर्ड फ्रॉम शिंदे सेना टू UBT MLAs एंड दीज MPs are flying tonight to Delhi where a meeting will be held with the Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde, in whose party these disgruntled netas from Uddhav's faction will be coming in. So important details there being highlighted of how Operation Tiger is being played out in Maharashtra. To tell you more about this in detail, the Maharashtra politics is buzz with this Operation Tiger. What is this Operation Tiger? This is the Uddhav Sena symbol after which this whole ruckus has been created about how people are unhappy in UBT and they want to switch sides. Now Maharashtra, Shinde Sena leader has made a big claim saying that at least 7 Uddhav Sena MPs are willing to join Shinde faction before the monsoon session. The statement comes amid increased political activity and back-channel discussions in the state. Meanwhile, Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde evaded any question on Operation Tiger, maintaining silence on the political controversy surrounding the issue. Uddhav Thackeray has summoned party MLAs on June 22nd amid Operation Tiger buzz. Shiv Sena UBT is likely to discuss party strategy and future political course with them. With both sides making strong claims, all eyes are now on whether the monsoon session sees a major political shake-up in Maharashtra. How many MLAs, MPs will stay with Uddhav and how many will jump ship to Shiv?

0: Maharashtra is underway. Shinde Sena leader's big claim says 7 Uddhav Thackeray MPs will join Shinde Sena before monsoon session, says talks are in final stage. Temporary ban on Telegram in a move to curb paper leak ahead of NEET examination. Centre has also instructed platforms to disable its message editing feature in India until June 30th. NTA says measures aimed at preventing organised cheating networks. Israeli envoy speaks to NDTV, raises concern over US-Iran deal, says ceasefire and reopening of the Strait of Hormuz are not enough to resolve deeper security risks for Israel. Starting off with some breaking inputs coming in from Maharashtra, where as per sources, some of Uddhav's MPs, their phones are switched off. Uddhav Thackeray is personally trying to persuade the disgruntled netas. But so far, Uddhav's MPs are in incommunicado and they are unable to reach them. Some MPs are also heading towards Delhi, which remains a big concern for Uddhav Thackeray. My colleague Ram Shinde is with me for more details. Ram Shinde, please do tell us about what more are you picking up from your sources?
1: बिल्कुल, जो बंगाल में टीएमसी के साथ हुआ वहीं अब महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ हो रहा है. उद्धव ठाकरे के 6 जो सांसद है वो अभी नॉट रीचेबल है, वो दिल्ली आ रहे हैं ऐसे पता चला है और कल वो अपनी मीटिंग लेंगे और मीटिंग के बाद जो संसद का ग्रुप लीडर है वो तय करेंगे और व्हिप भी तय करेंगे और उसके बाद ये लेटर जो है वो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मीटिंग करेंगे और उनको ये जो लेटर है वो देंगे, ऐसा भी जानकारी पता चल रही है. लेकिन अभी जो ताज़ी खबर है जो कि संजय राउत ने अभी ट्वीट किया है और ट्वीट करके ये बताया गया है कि सांसदों को खरीदने का काम शुरू हुआ है और आज रात को सांसदों को खरीदा जाएगा और इसलिए 15 करोड़ का एडवांस जो है वो देने के लिए सांसदों को यहाँ पे दिल्ली में बुलाया गया है. उन्होंने आंकड़ा भी डाला है कि कितने करोड़ दिए जा रहे हैं. 15 करोड़ में सांसद खरीदी का काम जो है वो चल रहा है और ये घिनौना है, ऐसा उन्होंने अभी ट्वीट भी किया है. दोनों ग्रुप जो है वो अभी दिल्ली में है. एक तरफ से उद्धव ठाकरे के जो 6 सांसद टूटने वाले हैं वो भी अभी दिल्ली में आए हैं और कुछ सांसद जो है वो अभी भी आ रहे हैं और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के जो भरोसे के सांसद है अनिल देसाई, अरविंद सावंत, ये दोनों और संजय राउत, ये तीनों दिल्ली में सुबह से ही आए हैं क्योंकि अनिल देसाई ये चीफ व्हिप है और अरविंद सावंत ये ग्रुप लीडर है. तो कोई भी अगर एक्शन लेनी है तो इन दोनों को ही एक्शन लेनी होगी. कोई भी कॉग्निजेंस अगर रजिस्टर करना है या फिर लोकसभा अध्यक्ष के पास जाकर कोई भी कंप्लेंट करनी है तो इन दोनों को ही करनी है और इन दोनों ने ही आज दिन भर जो सांसद नाराज थे उनको मनाने की कोशिश की लेकिन पूरी सभी कोशिशें जो है वो नाकाम हुई ऐसे दिख रहा है और आज रात की फ्लाइट से ये सभी सांसद 6 सांसद यहाँ पे आ रहे हैं. अब उद्धव ठाकरे की पार्टी दूसरी बार टूट की कगार पे खड़ी है. देखना होगा कल का दिन, ये महत्वपूर्ण होगा उद्धव ठाकरे के लिए. और खबर ये भी है कि एकनाथ शिंदे आज रात को आने वाले हैं और जो बागी सांसद है उनके साथ मीटिंग करने वाले हैं और फिर ग्रुप लीडर जो है वो तय किया जाएगा, व्हिप तय किया जाएगा और जो प्रोसीजर है वो कल पूरी की जाएगी. तो इसका मतलब है कि 20 तारीख से पहले ये पूरी प्रोसीजर जो है वो खत्म होगी. तो इसलिए कल का दिन दिल्ली में महत्वपूर्ण है उद्धव ठाकरे के लिए और एकनाथ शिंदे के लिए भी.
0: एब्सोल्युटली, वेरी इंपॉर्टेंट एंड इनसाइटफुल डिटेल कमिंग इन माय कॉलीग. थैंक यू सो मच राम शिंदे फॉर गिविंग अस. राम शिंदे वाज इन्फॉर्मिंग अस दैट टुनाइट इज अ वेरी की नाइट. 15 करोड़ इज द प्राइस दैट इज बीइंग ऑफर्ड फ्रॉम शिंदे सेना टू यूबीटी एमएलएज एंड दीज एमपीज आर फ्लाइंग tonight to Delhi where a meeting will be held with the Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde in whose party these disgruntled netas from Uddhav's faction will be coming in. So important details there being highlighted of how Operation Tiger is being played out in Maharashtra. To tell you more about this in detail, the Maharashtra politics is buzz with this Operation Tiger. What is this Operation Tiger? This is the Uddhav Sena symbol, after which this whole ruckus has been created about how people are unhappy in UBT and they want to switch sides. Now, Maharashtra

0: India Inc.'s most respected names, chose India Inc.'s best and brightest.
1: These kind of awards and jury lineup, you are truly giving it the right weightage.
2: I think it's heartening to see talent that there is in across India Inc.
3: We should be awarding companies and individuals who have focused not only on growth, but also on bringing good governance.
4: Be part of jury and vote on the people, the men, the women, the companies in India who have the right stuff is a great opportunity for us.
5: For us, the biggest thing is trust. That's what we provide.
6: We need leaders in India that can help take India being a global superpower.
7: We've got a fantastic jury and we've left all decisions to the wisdom of the jury.
0: Who will earn India's top business honors? Find out at the NDTV Prom.
8: Welcome, you're watching NDTV. I'm Aditi Bhardwaj, and let's take a look at the top stories that we are tracking here at this hour. Prime Minister Narendra Modi, welcomed by French President Emmanuel Macron. He attended the G7 powerful summit that took place. This powerful photograph has become one of the most important pictures in the history, where it represents and reflects India's growing dominance. Prime Minister Narendra Modi and Donald Trump handshake becomes the visual of the moment. Bilateral meetings include a Trump-Modi discussion. They are expected tomorrow. Operation Tiger in Maharashtra is underway. Shinde Sena leader's big claim says 7 Uddhav Thackeray MPs will join Shinde Sena before monsoon session. Says talks are in final stage. Temporary ban on Telegram in a move to curb paper leak ahead of NEET examination. Center has also instructed platforms to disable its message editing feature in India until June 30th. NTA says measures aimed at preventing organized cheating networks. Israeli envoy speaks to NDTV, raises concern over US-Iran deal, says ceasefire and reopening of the Strait of Hormuz are not enough to resolve deeper security risks for Israel. Starting off with some breaking inputs coming in from Maharashtra, where as per sources, some of Uddhav's MPs, their phones are switched off. Uddhav Thackeray is personally trying to persuade the disgruntled netas. But so far, Uddhav's MPs are incommunicado and they are unable to reach them. Some MPs are also heading towards Delhi, which remains a big concern for Uddhav Thackeray. My colleague Ram Shinde is with me for more details. Ram Shinde, please do tell us about what more are you picking up from your sources?
9: बिल्कुल, जो बंगाल में टीएमसी के साथ हुआ वहीं अब महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ हो रहा है. उद्धव ठाकरे के 6 जो सांसद है वो अभी नॉट रीचेबल है, वो दिल्ली आ रहे हैं ऐसे पता चला है, और कल वो अपनी मीटिंग लेंगे और मीटिंग के बाद जो संसद का ग्रुप लीडर है वो तय करेंगे और व्हिप भी तय करेंगे, और उसके बाद ये लेटर जो है वो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मीटिंग करेंगे और उनको ये जो लेटर है वो देंगे, ऐसा भी जानकारी पता चल रही है. लेकिन अभी जो ताज़ी खबर है जो कि संजय राउत ने अभी ट्वीट किया है, और ट्वीट करके ये बताया गया है कि सांसदों को खरीदने का काम शुरू हुआ है और आज रात को सांसदों को खरीदा जाएगा, और इसलिए 15 करोड़ का एडवांस जो है वो देने के लिए सांसदों को यहाँ पे दिल्ली में बुलाया गया है. उन्होंने आंकड़ा भी डाला है कि कितने करोड़ दिए जा रहे हैं. 15 करोड़ में सांसद खरीदी का काम जो है वो चल रहा है और ये घिनौना है, ऐसा उन्होंने अभी ट्वीट भी किया है. दोनों ग्रुप जो है वह अभी दिल्ली में है. एक तरफ से उद्धव ठाकरे के जो 6 सांसद टूटने वाले हैं वो भी अभी दिल्ली में आए हैं, और कुछ सांसद जो है वो अभी भी आ रहे हैं. और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के जो भरोसे के सांसद हैं, अनिल देसाई, अरविंद सावंत, ये दोनों और संजय राउत ये तीनों दिल्ली में सुबह से ही आए हैं, क्योंकि अनिल देसाई ये चीफ व्हिप है और अरविंद सावंत ये ग्रुप लीडर है। तो कोई भी अगर एक्शन लेनी है तो इन दोनों को ही एक्शन लेनी होगी। कोई भी कॉग्निजेंस अगर रजिस्टर करना है या फिर लोकसभा अध्यक्ष के पास जाकर कोई भी कंप्लेंट करनी है तो इन दोनों को ही करनी है। और इन दोनों ने ही आज दिन भर जो सांसद नाराज थे उनको मनाने की कोशिश की, लेकिन पूरी सभी कोशिशें जो है वो नाकाम हुई ऐसे दिख रहा है। और आज रात की फ्लाइट से ये सभी सांसद 6 सांसद यहाँ पे आ रहे हैं। अब उद्धव ठाकरे की पार्टी दूसरी बार टूट की कगार पे खड़ी है। देखना होगा कल का दिन ये महत्वपूर्ण होगा उद्धव ठाकरे के लिए। और खबर ये भी है कि एक नाथ शिंदे आज रात को आने वाले हैं और जो बागी सांसद है उनके साथ मीटिंग करने वाले हैं और फिर ग्रुप लीडर जो है वो तय किया जाएगा, व्हिप तय किया जाएगा और जो प्रोसीजर है वो कल पूरी की जाएगी। तो इसका मतलब है कि 20 तारीख से पहले ये पूरी प्रोसीजर जो है वो खत्म होगी। तो इसलिए कल का दिन दिल्ली में महत्वपूर्ण है उद्धव ठाकरे के लिए और एकनाथ शिंदे के लिए भी।
8: एब्सोल्युटली वेरी इंपॉर्टेंट एंड इनसाइटफुल डिटेल कमिंग इन माय कॉलीग, थैंक यू सो मच राम शिंदे फॉर गिविंग अस। राम शिंदे वाज इन्फॉर्मिंग अस दैट टुनाइट इज अ वेरी की नाइट, 15 करोर इज द प्राइस दैट इज बीइंग ऑफर्ड फ्रॉम शिंदे सेना टू यूबीटी एमएलएज एंड दीज एमपीज आर फ्लाइंग tonight to Delhi where a meeting will be held with the Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde, in whose party these disgruntled netas from Uddhav's faction will be coming in. So important details there being highlighted of how Operation Tiger is being played out in Maharashtra. To tell you more about this in detail, the Maharashtra politics is buzz with this Operation Tiger. What is this Operation Tiger? This is the Uddhav Sena symbol after which this whole ruckus has been created about how people are unhappy in UBT and they want to switch sides. Now Maharashtra, Shinde Sena leader has made a big claim saying that at least 7 Uddhav Sena MPs are willing to join Shinde faction before the monsoon session. The statement comes amid increased political activity and back-channel discussions in the state. Meanwhile, Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde evaded any question on Operation Tiger, maintaining silence on the political controversy surrounding the issue. Uddhav Thackeray has summoned party MLAs on June 22nd amid Operation Tiger buzz. Shiv Sena UBT is likely to discuss party strategy and future political course with them. With both sides making strong claims, all eyes are now on whether the monsoon session sees a major political shake-up in Maharashtra. How many MLAs, MPs will stay with Uddhav and how many will jump ship to Shinde Sena? Sample the reactions.
10: टाइगर चल रहा है, शिंदे सर 5 से 6 सांसद ऐसे हैं उनके जा सकते हैं। ऑपरेशन टाइगर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बहुत चर्चा है सर इसके बारे में दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक।
11: इसका मतलब है कि वो लोग टाइगर समझते हैं, समझते हैं ना कि हम टाइगर हैं और टाइगर का ऑपरेशन आसान नहीं होता है। कोशिश तो करेंगे, उनके पास दूसरा कोई काम नहीं है, देश कल्याण का काम नहीं है, जनता के कल्याण का काम नहीं है। पार्टियां तोड़ो लोगों से नहीं, यही काम चल रहा होता
12: है। संकट नहीं है,
11: संकट नहीं है। अगर संकट आता है तो संकट को निपटा लेंगे।
13: ऑपरेशन टाइगर की जो खबर आ रही है आपकी क्या प्रतिक्रिया है?
14: ऐसा कोई ऑपरेशन वगैरह नहीं है। ये बात ज़रूर है कि मीडिया में साल डेढ़ साल से ये बातें इंटरमीडियंटली आते रहती हैं और उसको उसकाया जाता है, उसको लाया जाता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। सीरीज ऑफ मीटिंग्स इन द लास्ट 1.5 ईयर्स हैव बीन कंडक्टेड बाय उद्धव जी, कन्वीन बाय उद्धव जी एंड एवरीवन अटेंडेड इन द लास्ट मीटिंग। 4 ऑफ अस वेयर देयर इन पर्सन, after that 5 of them were there, they were on video conferencing. They couldn't come to Madhusri in Mumbai because they had their individual engagements which were fixed much earlier. So they yeah, and aur wo integrity jo pledge karna hai wo baar baar kitni baar karenge wo.
8: Breaking news coming in, and this is in regards to Prime Minister Narendra Modi's statement at G7. He raised the seafarers' safety issue at G7. This comes after an attack on the Indian vessel where 3 Indians three Indians were killed on board a ship in the Strait of Hormuz when a U.S. strike decimated that ship. These are the visuals of that ship which was destroyed, after which three Indians were killed. And now Prime Minister Narendra Modi reiterating how it is important to ensure safety of seafarers amid these tumultuous times. The Strait of Hormuz must be safe. This is what is being urged by Narendra